साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पए संग तेरे, इंद्री का बल थाता। चरण रहे कर टरक परे, है मुख हो न निकसै बाता। थाके पंच

सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई, इहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञानं कल्याण निधनं हर नाम मन रमन चल चित वित भ्रमा भ्रम जग मोह मगन हित।

दुख अधिक जन्म मरण पज शरण सतगुर उबर है हर नाम रिज रमण गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत।

साह साह सदा संभालिए आपे बख्शे करे रजाए सेई ना चहे जो तुद पावे जे गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से।

जा कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्र सो तंद जह

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बेकार।

पावे, दूजे पाए कुरूपी दुख पावे, दुख पावे अगे जाए, दूजे पाए कुरूपी दुख पावे अगे जाए, गुणवंती नित गुण रवे हिर

निर्मल मन करण कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

वावण जो दे सहना मन है कहना आस नाही वावण वारे खसम कढाए किरत कमावण सब

पावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गाव है जो तेरे मन भाव है। माया मोहे चेत है नाही अहला जन्म गवावे। एक मूड

समत कर जाने सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हो मैं पापा राम जप हर हर

विछड़ है सतगुर सेव समाहे पौड़ी। तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी, तिस मिलिया सतगुर प्रीतमय जिन होमे विच हमारी। सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी। नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी, गुर पूरे हर उपदेसया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख,

सो सतगुर कहो सब तन तन, जिन हर भगत भंडार लहाया। श्लोक महला तीजा, सतगुर मिलिया।

अन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख को हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, सलोक महला तीजा।

जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलताओ ठाक रखो कर अपने।

चात्रक जल, जो चात्रक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाई, गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।

सहज सैन अर सुख मन नारी ऊंध कमल बिगसया देखो अचरज भया।

निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा। भूखे खावत लाज न आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दरगाह मुख।

सब पवित्र है, जो नाम हर राते तिनके कर मंदिर महल सराई, सब पवित्र है। जिन्नी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाते।

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म

तह हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपा।

मंगल सुख सुधारे तनासरी महला पंजवां कर अठवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले ए लोक परलोक।

जवाम। मांगौ राम ते सब थोक, मानुख कौ जाचत श्रम पाइय, प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ। कोखे मुन जन सिमरत।

रहाव। बिन गुर मूढ़ पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पद सेवे, तिन सफलो जन्म सन।

मिल साध गुर हर नामे हर रस चाख बहराव तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लाग बा तृष्णा अगन।

हर हर हर हर भगत दृढ़ा बहो हर हर नाम उमा हाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर हर हर

तहाउ सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा सा

सुरहै आदि पूरन मध्य पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है।

भोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग श्लोक कुटुंब जतन करण माया अनेक उदमहि।

तिन प्रभ आप पुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत सियो, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगसियो पेख रंग कुसुंब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल सियो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत को ताव है बहु पांती, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

तिलंग महला चौथा। हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइयां। आए मिल गुर

इस हर धन का शाह हर आप है संत हो। इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो, केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो।

पाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

नाल हन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहज सुख रहन गुर का शब्द विसारे

सरोवर है, वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया, से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों, गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया, गुर भाणा मन लैन। वडभा

सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जा गाई एक दान मंगाए नानक बेचारा हर दासन दास कराई।

आनंदिनो शब्द रवहो, अनहद शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए, हर गुण गाव हो नारी, आनंदिन भगत करहें गुर आ गए, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसे

सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रवया सोई, गुरमत सच पाइया।

मन मोह मद सगल ब्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो

नाम अखोट निदान है गुरमुख मन बसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

गुर वचनी मन सहज त्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

उपेक्षा कर ही मह सब कोट निधान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ध्यान अंदिन गावै एको नाम इस जुग मह वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखां तह रहया समाई।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वड भागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

रहाउ। सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृप्ता सया ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कलता हरी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी।

मंत्र दृढ़ाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

पूर्ण पूर रहो संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तनते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै अत निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लहिया, मन हठ कर्म करै।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

राम कली महला पहला सुरत शब्द साथी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत चोली मंगन कै ताई भिख्या नाम पड़े।

जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी।

सगल पसारी सोग हरख महदे बिरधानी साखत एवही करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे इहो निधाना साधु पाहे नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन्ही डीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द तह

फलत फलत होहे दोहें सुहेले, अचर्ज पुरख त्याओ रहाव, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत, सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर

है भेवा। शब्द विचार गह है गुर सेवा, मन तन निर्मल अभिमान अभेवा। निर्मल मन तन निर्मल अभिमान अभेवा। कर्म मिले पावे सचनाऊ, तुम शरणागत रहो सुभाओ। तुम ते उपजियो भक्ति।

बिन नरक गया, खिलमह वेश करह नटुआ ज्यों, मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह बिकार विथार कन्हेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वह रोग गया। सुख संपत कौ आवत देखें, साकत मानं अभिमान पया, जिस

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द।

कुटंब छोड़ पर पवन करहें, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

पूजा करै सब लोक संतहो, मन मुख थाए ना पाई। शब्द मरै मन निर्मल संतहो, ए पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई।